तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान।

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

की एक एक की पीर पछान है, घट घट के पट पट की जान है, जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत देह अपारा, जब आ करख करत हो कबहू, तुम मैं मृत दे तर सब हूँ।

कौं सिमट पयो शंकर एकाठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेती उठ बतुत पाता शकल मलेश करो रण काता

हरि हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शकरता श्री अस्तु जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट

नजारे क्यों देखने हैं भला, आप पहले बर्थडेज मना लेते हैं, ठीक है? आज किसकी बर्थडे है? सैम, बरसों पहले कॉल आया करती थी आज के दिन नरेश कोटक की, और कहते कि मेरी बीवी की सालगिरह है, तो मैं हमेशा उनके लिए गाना सुनाया करती थी, कोई भी होता जैसे सामने, तो नरेश कोटक बहुत खुश होते थे। ये नीरू कोटक की आज का आज जन्मदिन है इनका, नीरू कोटक का, तो हम पूरी टीम की जानिब से, आप भी अगर उनको जानते हैं, नीरू को कितने लोग जानते हैं, तो ज़रूर उनको कॉल करके उनका दिन बनाइएगा। नीरू कोटक, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अरसे से इनके शौहर जो दुनिया में नहीं रहे, वो भी हमारे बड़े रेगुलर लिसनर थे, तो ऐसे मैं अपना फ़र्ज़ समझ

0: जानती हूँ कि नीरू कोटक को हर साल आज के दिन हम विश करते हैं, खुदा आपका जन्मदिन बहुत अच्छा गुजारे। और साथ समिन आए हैं, कौन हैं जिन्होंने अभी मैसेज किया है?
1: प्रवीण जी, आपको और सब बेमिसाल सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम और जुमा मुबारक प्याली बातिया एडोरेट से। प्रवीण जी, तेरे चेहरे से ये गाना फिल्म कभी कभी का है, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया है और जिसको शायर लुधवानी ने लिखा है और जिसकी धुन खयाम ने बनाई है। गाना अच्छा लगा, सुनाने के लिए आपका शुक्रिया।
0: बहुत अच्छे प्यार अली और परवीन भट्ट, शुक्रिया आपका। अब चलते हैं मैसेज प्यार अली के बाद कौन आया। सबसे पहला हमें मैसेज प्यार अली का ही मिला था और एज ऑलवेज मुनीर हमेशा साथ होती हैं, कहती हैं, अच्छा साथी वो है जिसे देखना तुम्हें खुदा की याद में मसरूफ़ कर दे। कहते वो अच्छा साथी है, अगर आप उसको देखते हैं ना तो आप खुदा की याद करने लगते हैं, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा करे। अगर आप उसके साथ बात करते हैं तो आपकी जानकारी बढ़ती है, और जिसका अमल आखिरत की याद दिलाए, और वो जो करता है आपको लगे कि कयामत के दिन के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, खुदा आपको नवाजेगा, अच्छा साथी वो है। बहुत अच्छे मुनीर। और साथ आए हैं कौन हैं? सेल्स, जब सेल्स की बात होती है आपको पता चल जाना चाहिए। शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, उन्होंने कहा है कि सेल्स दैट नेवर लीव After a miscarriage, fetal cells can migrate to the mother's brain, heart and lungs where they may remain for up to 27 years. कहते हैं जब miscarriage हो जाए तो जो fetal cells हैं जिसके साथ बच्चा बनता, बच्चे का वजूद होता, तो कहते हैं कि वो cells जो हैं माँ के दिमाग, दिल और फेफड़ों में जा बसते हैं और वहाँ बैठे रहते हैं 27 बरस। बहुत शुक्रिया शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अमीर अली राणा, परवीन जी विशिंग यू एंड ऑल द बेमिसाल फैमिली जुमा मुबारक। इस अजनबी शहर में अपना कोई आशियाना नहीं है, यहाँ दौलत है सबके पास पर याराना नहीं है, हर शख्स मसरूफ है अपनी ही दुनिया में, लगता है रिश्ते निभाने वाला जमाना नहीं है। बिल्कुल सही अमीर अली राणा, हम वैसे ऐसा कहते रहते हैं कि पुराने ज़माने में रिश्ते निभाया करते थे, पर आई एम नॉट श्योर, ये कोई स्टडी तो नहीं ना हुई कि इंसान कंपैरिजन अच्छी तरह से कर सके और इस बात को माने। ठीक है, बाकी मैसेजेस सामने हैं थोड़ी देर के बाद।

ठंडी हवा काली घटा आंखें झूम के मिस्टर मिसेस 55 का गाना रूपल को पसंद है। अच्छा ठीक है, आपने कहा मधुबाला गुरुदत्त गीताबाली इस फिल्म में थे, बहुत अच्छी बात है, देखती हूँ वक्त होता है मिलता है तो। भरत गंगाराम लंदन में हैं, कहते हैं कि वंदनीय परवीन जी बेमिसाल अंदाज के लंबे सफ़र में निकले, समय लंबा सफ़र आज खबर है, आप हैरान हो जाएंगे, काफ़ी कुछ है आपको बताने के लिए पर जल्दी जल्दी करेंगे। और सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन के वक्त से पहले ही पूछना है, और वो है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है जो, इसका तो हम नाम ले सकते हैं, युगेंडा है। तो समय युगेंडा के ट्रेड इंडस्ट्री एंड कोऑपरेटिव्स के मिनिस्टर कौन है, ट्रेड इंडस्ट्री एंड कोऑपरेटिव्स के, मुसवेनी ने इनको मुकर्रर किया है, यानी मंत्री हैं तिजारत के, ठीक है, तिजारत के, सनतकारी इंडस्ट्री के, बहुत बड़ा होता है, मंत्री हैं हमारे साथ वाले मुल्क के। सिर्फ आपने मुझे 0701 106 106 पर उनका नाम दे देना है, ठीक है, वो भी हो जाएगा, लेकिन पहले हमने नीरू कोटक की बर्थडे इस गाने के साथ मनानी है, उनको डेडिकेट करते हैं एक गुजराती का गाना।

0: चंद्रिका बसंत गोसाई और यूसुफ भट्ट, बहुत शुक्रिया आपके कॉल्स का। रसीला क्या कहती हैं? कहती हैं, द मोर यू ग्रो द मोर यू अंडरस्टैंड व्हाई साइलेंस इज लग्जरी, नॉट एवरीथिंग नीड्स योर इन्वॉल्वमेंट। कहते हैं हर चीज में टांग मत अड़ाओ और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, खामोशी इख्तियार करें। एंड डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन थिंग्स यू कैनॉट कंट्रोल, जो आपके इख्तियार में नहीं है उन चीज़ों पे कब्जा जमाने की भी कोशिश ना करें। जी हाँ, तवानाई आपकी वेस्ट हो रही है एनर्जी। यूज योर एनर्जी इन बिलीविंग, हीलिंग एंड मैनिफेस्टिंग। अपने आप को सोचो, तसव्वुर करो कि आप बड़े कामयाब हो, आप कामयाब हो जाएंगे। ये कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन है, इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं।
1: ब्यूटीफुल लाइन सुनिए, इस अजनबी शहर में अपना कोई आशियाना नहीं है, यहाँ दौलत है सबके पास पर याराना नहीं है, हर शख्स मशरूफ है अपनी ही दुनिया में, लगता है रिश्ते निभाने वाला अब जमाना नहीं रहा। शुक्रिया, सुबह का प्यारा सलाम, सौमा आहमद किसुम।
0: कोई बात नहीं, अगर ये मैसेज पहले हमने सुन लिया, आपकी आवाज़ में नहीं था, वो मैंने सुनाया था, सो इट्स गुड। अब चलते कोट ऑफ द डे। ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या बात है। ML विश्वकर्मा कहते हैं कि जब आपको दुख मिलता है, आप कहते हैं पता नहीं मैंने क्या गलत कर दिया। कहते हैं हर चीज़ गलत करने से दुख नहीं मिलता हर बार, कहते हैं कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। और तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, कहते हैं दो कलियां थी फिल्म, एक्टर बिस्वजीत थे और माला सिन्हा साथ, 1968 की फिल्म थी, 68, मोहम्मद रफ़ी और लता का गाया हुआ गाना, और चाइल्ड आर्टिस्ट इसमें बेबी नीतू थी, नीतू सिंह, जो फिर बहुत अच्छी अदाकारा बनी। कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, आपका शुक्रिया मिस्टर ML विश्वकर्मा। और यहाँ पर हैं जो आए हैं, उनका नाम क्या है, तो मैंने मिनिस्टर का नाम दे दिया आपने, पराग मैदिराता। वेरी गुड, पराग के परग, पराग है, पराग मैदिराता आपने करेक्ट आंसर। आप पहले हैं जिन्होंने नाम दिया है। ये साथ वाले मुल्क का ट्रेड मिनिस्टर एंड कोऑपरेटिव्स एंड इंडस्ट्री का कौन है, सना। जुमा मुबारक आपने सबको कहा। अमीर अली राणा आपने सही जवाब दिया है, वेल डन। भरत गंगाराम कहते जुमा मुबारक और आप सबका स्वागत करता हूं मैं लंदन से, भरत गंगाराम ने कहा है, और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। नीला शेत कमाल है, क्यों कल आपको पता था कि नहीं पता था कि अभी आपने पता चलाया है, कल मुझे लगता है आपको नहीं पता था, पर नीला शेत थैंक यू। साथ आते हैं मिस्टर मेहता फ्रॉम एम्बू, गुड मॉर्निंग, क्या बात है, वेरी नाइस गुजराती सॉन्ग, तने जाता जोई, पता नहीं जोई क्यों कह रहे थे मुकेश साहब। खैर टीना, जुमा मुबारक सब कर, और आपने कहा है मज़ा आ गया गुजराती का गाना सुनकर मुकेश की आवाज़ में। टीना बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट। और रंजन विनोद, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू नीरू कोटक। आई नो बोथ लिसनर्स, बेमिसाल अंदाज के नरेन कोटक वॉज रेगुलर, नरेश था मेरे ख्याल में, जी नरेश थे, नरेश कोटक। रंजन बहुत मेहरबानी आपकी। सोनल, जुमा मुबारक और आंसर करेक्ट है आपका। और अब देखते हैं कि यहाँ पर यासर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक, आज तारीख में क्या हुआ था, आज जून 5 है, इट्स अ मोन्यूमेंटल डे ग्लोबली एंड इन अफ्रीका। कहते हैं कि बहुत अहम दिन है दुनिया में, विश्व में और अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में। 1967 में 6-day वॉर बिटवीन इजराइल एंड द नेबरिंग अरब स्टेट्स ऑफ इजिप्ट, जॉर्डन एंड सीरिया, समझ इसको 6-day वॉर कहते हैं, 1967 में हुई थी, उसके बाद तो कोई अमन ही नहीं हुआ, जमीन हथिया ली गई। The tragic assassination of Robert F. Kennedy, 1968 समय जॉन एफ कैनेडी के भाई थे और इनका भी कत्ल हुआ था. 1975 रीओपनिंग ऑफ द सुएज कनाल टू इंटरनेशनल शिपिंग. ये जो समुद्री रास्ता था ना सुएज कनाल उत्तर अफ्रीका में ये खोला गया था आज. या सर वेरी गुड थैंक यू. मिसिस धंजल का बाद में पहले एक फरमाइश पूरी करें.

और मिसेज धंजल क्या कहती हैं, कहती है, सभी को जुमा मुबारक, और सही जवाब भी दे दिया है। एक और जवाब आ गया सना, बिल्कुल आंसर आपने दे दिया है, करेक्ट आंसर है। साथ ही चलते हैं छिंदर सैमी के, जुमा मुबारक कहा है, थैंक यू सो मच रूपल की जानिब से। ये गाना उनकी फरमाइश पर था जो अभी अभी आपने सुना है। और समय आंसर क्या है, ये साथ वाला मुल्क जो है जहां मुसवेनी है राज कर रहे हैं, ना जाने सात टर्म्स कितने टर्म्स, लेकिन एक बात के लिए मैं उन्हें एडमायर करती हूँ कि उन्होंने संजय टन्ना, टन्ना है या टाना है, संजय टन्ना को ट्रेड मिनिस्टर एंड कोऑपरेटिव्स एंड इंडस्ट्री का मिनिस्टर मुकर्रर किया है। कल ये पार्लियामेंट के सामने आए, पेश हुए और कहा कि आप इंडियन हैं। संजय टन्ना, उन्होंने कहा कि देखो मैं यहाँ का पैदाइशी हूँ, मेरे पास यहाँ का पासपोर्ट है, मैं यहीं रहा हूँ, हाँ मेरा ओरिजिन है भारत, लेकिन मेरा देश युगेंडा है। बहुत अच्छा जवाब दिया संजय टन्ना ने।

0: Jodi.
1: Bangla Bollywood hits and ballads to sing along with.
2: East FM.
1: Kenya's premier
2: Asian mix.
3: With news from Kenya, Asia, and around the world. This is East FM News. East FM.
4: Energy CSOPO Wandayi has assured Kenyans that fuel suspected to have high sulfur content has been removed from the market. Wandayi said the oil was imported outside the G2G fuel procurement framework. He maintained that the government moved swiftly to address the issue and protect consumers from all contaminated fuel.
5: Jambo litokea kwamba katika wakati huo kuna meli ya mafuta ilingia nje ya G2G framework. Na hiyo ndiyo basically the summary of the problem. But I think it's being dealt with, and it was dealt with actually.
4: The Ministry of Health is committed to fighting rising teen pregnancies and HIV infections among youth by funding comprehensive sexual education and reviving community prevention programs affected by donor cuts. Speaking during the opening of the 9th Pan-African Adolescent and Youth Sexual and Reproductive Health Summit in Mombasa, Family Health Head Dr. Bishari Sark confirmed healthcare workers will be trained to provide adolescent-friendly services, assuring Kenyans of systemic infrastructure improvements to access essential medicine.
6: We have launched the Digital Health Superhighway. We have deployed the Iwene initiative, Every Mother, Every Newborn, Everywhere, which allows us to track deliveries and outcomes in real time across the country.
4: President William Ruto has called for the urgent acceleration of the tripartite free trade area and African continental free trade area agreements to counter low intra-African trade, which stands at 17%. Speaking during the Kenya-South Africa Joint Business Forum, Ruto stated that Kenya is ready to host the headquarters to boost economic momentum.
7: Intra-European trade is close to 70. The region that has progressed the most in intra-regional trade is the East African Community. But we're still way below where we should be.
4: Hundreds of young Kenyans are to benefit from mass employment opportunities following a powerful strategic partnership between Pride Inn Hotels and global restaurant brand TGI Fridays. Pride Inn MD Hasnain Nurani has confirmed that the investment will create hundreds of direct and indirect jobs, accelerating revenue generation while boosting local businesses through the exclusive sourcing of domestic goods. That's the news update on East FM. I'm Suzanne Kimashia.
3: East FM. East FM. This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
8: Bemisal Andaaz with Parveen Atom.
9: Samjhe, ab wo jo aane wala waqt hai, aane wala safar hai, hawai safar, air travel kaisa hoga? Is par maine aapke liye ek khabar rakhi hai. To हमारे जो आवाजें हैं सामने आवाजों से पहले मैंने सोचा कि यह खबर आपको दे दूं क्वेंटस आप जानते हैं बहुत बड़ी एयरलाइन है इनका प्रोजेक्ट सनराइज है तो क्या है यह सनराइज दुनिया की सबसे लंबी परवाज समझ जो कमर्शियल परवाज होगी जिसमें मुसाफिर बैठते हैं एक शहर से दूसरे जाते हैं ठीक है यह सबसे लंबी हवाई जहाज की परवाज होगी 22 घंटे आप हवाई जहाज में बैठेंगे 22 आवर्स लेकिन जाते कहां से कहां हैं मतलब तकरीबन 2 दिन लगेंगे आपने अगर सिडनी से न्यूयॉर्क जाना है या सिडनी से लंदन जाना है फिर समय नॉन स्टॉप होगी ये फ्लाइट इसमें कोई रुकावट नहीं होगी प्लेन बस 22 घंटे उड़ता ही रहेगा कहते हैं कि ये लॉन्ग हॉल ट्रैवल की तरफ जा रही हैं एयरलाइंस जहां इनका मुनाफा होगा लंबे सफर में तो इस तरह से समय आप भी 22-24 घंटे तो बैठे ही रहेंगे वैसे भी मैंने सुना है आई मीन अगर अमेरिका जाना होता तो 14-15 घंटे तो होता ही है ये सफर अब देखें कौन हैं जिन्होंने मैसेज किया
10: वेलकम सारे नमस्कार कितना सुना गाना है वहां कौन है तेरा मैं भी लाइक कर दिया गाना कहंदे थोड़े लाइन पढ़ दिया कहंदे हिंदू पूजे दोहरा के हिंदू मंदिर नु पूज दिया मुसलमान मसीत नु मान दिया नामे सोई सेविया नामे एक भगत होया ओ कहंदे मैं उठे परमात्मा नु याद करदा जय दोहरा ना मसीत ना कोई उठे मंदिर आ ना कोई मसीत आ मैं बैठ के परमात्मा नु खुली जगह ते याद करदा वा थैंक यू जी
9: हां अगर मस्जिद हो गुरुद्वारा हो मंदिर हो तब भी ठीक है ना भी हो तब भी तो ऑफकोर्स उसको याद करना है सलीम मेहर इन लंदन
0: अस्सलाम वालेकुम प्रवीण जी सलीम मेहर फ्रॉम लंदन फुटप्रिंट्स मेनी पीपल विल वॉक इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ बट ओनली ट्रू फ्रेंड्स विल लीव फुटप्रिंट्स इन योर हार्ट Good morning and Jumma Mubarak to you, Praveen Ji, and all the lovely Bemisal listeners.

0: अच्छा चलो, ये जो जालिम कहता है कि ये बच्चे पल जाएंगे वहां वहां वगैरह, उसकी आवाज आपने पहचान ली है, नाम दे दिया है। मंजू डगर पहली कॉलर थी टू गिव मी द आंसर। भूपी पटेल आपने वो तो ठीक दिया है, लेकिन श्री राम लागू नहीं है। फिर मंजुला गोरसिया एक नाम सही दूसरा नहीं। कल्पना नो। और नितेश एक नाम सही दूसरा आपको ढूंढना है। और बरसात की एक रात है नहीं, ये फिल्म नहीं थी। फिर आप आते हैं एक और नाम जो कि गेस कर लिया है, और वो हैं हमारे साथ कौन है, वरिंदर कौर। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये उनकी आवाज़ है जो बड़े बुरे शख्स का रोल अदा करते हैं।
1: रवीना जी वालेकुम सलाम, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान ने वो डी आई सीरीज जीत ली है और 13 जून से अफगानिस्तान टू इंडिया 13 जून से वो डी आई का मुकाबला चालू होएगा।
0: थैंक यू सो मच इंडीड दिनेश भट्ट।

0: और यहां पर मंजू डगर ने एक आंसर तो वाह दूसरा भी दे दिया है करेक्ट फर्स्ट कॉलर टू गिव मी बोथ द आंसर्स राइट ठीक है अमीर अली राणा आपने कहा है भारत भूषण नहीं पर एक आपका आंसर करेक्ट है भारत भूषण नहीं है हालांकि इनका नाम भी बी बी से है सो स्टिल वन कॉलर जिन्होंने राइट आंसर दिया
1: इट्स 11:19
2: वी अनलॉक्ड गवा फॉर यू नाउ वी आर गिविंग यू अ फ्रंट रो सीट इनसाइड गवर्नमेंट इनसाइड द कैबिनेट इनसाइड द डिसीजन मेकिंग कमिटीज इनसाइड व्हाट्स अबाउट टू हैपन एंड व्हेन इट विल हैपन इनसाइड द बिग अपॉर्चुनिटीज इनसाइड द टेंडर्स इनसाइड गवर्नमेंट जॉब्स Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
3: Kenya's premier Asian mix continues.
4: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: और कृष्ण सर्वे ने एक नाम सही बताया है, दूसरे का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन अपीयरेंस उस एक्टर की याद आ रही है। मुझे नाम चाहिए था बी बी। और एमएल विश्वकर्मा ने बी बी का किया, नहीं वो कहते हैं डेनी डेनजोंगपा, उन्होंने शायद डी समझा है। विश्वकर्मा इट्स बी, बी फॉर ब्रदर, सो बी के साथ। और आपने कहा नाना पाटेकर, नो दोनों गलत हैं। और रोशन कांजी, आपने सबको विश किया है जुमा मुबारक। सो समय मेरे सवाल का जवाब देने की कोशिश करें एक बार फिर, अगर आपको सुना दूं तो कोई हर्ज नहीं होगा अगर एक बार फिर आप सुन लेते हैं ये।
1: पहले अपनी हालत तो देख बुड्ढे, सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ा रहा है तू। अगर मैंने तुझ पर एक हाथ रख दिया ना, कफन के गले पड़ जाएगा।
2: अब बस भी करो विक्रम, बहुत हो चुका, बहुत बोल चुके।
1: अगर मैंने बोलना बंद कर दिया ना, तो मेरे जूते बोलेंगे।
2: नहीं नहीं विक्रम, जरा ये तो सोचो इन बच्चों का क्या होगा।
1: इनको तो मैं भूल ही गया था,
2: इन हराम के पिल्लों को किसी यतीम खाने में डाल दो। और रहा सवाल तुम्हारी बेटी का, शक्ल सूरत भी अच्छी है, किसी कोठे पे बिठा दो, बुढ़ापा बड़े आराम से गुजरेगा।
0: ओ फल्ला, इतना जुल्म भी कोई कर सकता है? खैर आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन ये जो एक्टर है आपने देखा है इनको, लेकिन कभी इनके नाम पर ध्यान नहीं दिया। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हैं तो

0: और मनर पटेल क्या कहते हैं।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक, जय स्वामी नारायण, जय श्री कृष्णा, केम छो और लिसनर्स। एक भाई इंडिया में राशन वाले की दुकान पे गया और बोला, एक किलो शक्कर का क्या प्राइस है? तो उसने बोला कि 150 पर किलो। तो वो आदमी बोलता है, ऐसा करो, एक किलो दे दो। उसने एक किलो दिया पैकेट, तो उसका 150 सिलिंग होता था। तो उसने उसको बोला कि ये तो 800 ग्राम है। तो उसने वो दुकान वाले को 120 ही दिया। तो बोलता है, क्यों? तो बोलता है, तुम शक्कर को 800 ग्राम ले जाओ ना, तो अपने को उचकने का कमती पड़ जावे। तो बोलता है, तुम भी गिन लो पैसा, तो तुमको भी गिनने में वो हरकत नहीं हुए, इसलिए मैं तुमको 100 सिलिंग देता हूँ, 100 रुपया, सॉरी, थैंक यू, मनर पटेल की सोमो।
0: अच्छा, अगर आपने समझ लिया है ये जोक तो बड़ी अच्छी बात है। ओके, चंद्रिका वासंत गोसाई बहुत गाने एंजॉय कर रहे हैं। सना विश्वजीत है, नो, बोमन ईरानी है, नो नो, और मंजुला गोरसिया ने फिल्म गेस कर ली है, इसलिए वो अभी आंसर करने की कोशिश करें। नीलू वादिया, आपने कहा है कि पहला तो करेक्ट है, दूसरा प्राण है, नो, वो प्राण नहीं है। सो मुश्किल हो रहा है, मैं थोड़ी देर में आपको आंसर दे दूंगी।

0: जी अश्विन, मदन मोहन है ये?
1: यस प्रणव जी, ये बड़ी मशहूर गजल थी फिल्म भाई भाई की।
0: अच्छा, भाई भाई की।
1: यस, और मदन मोहन का म्यूजिक था, लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने।
0: ओह गॉड, अगेन अनदर जेम।
1: यस, और उनका हिस्ट्री क्या है कि जब भी बेगम अख्तर ने ये रेडियो पर सुनी तो तुरंत उनको, उन्हें मदन मोहन को फोन किया
0: जी,
1: और 18 मिनट्स दे वर डिस्कसिंग दिस गजल।
0: बिल्कुल, मैंने सुना है, ये पढ़ा था।
1: यस यस, तो ये फेमस गजल है फिल्म बाय बाय। और मैंने आपको बता दिया लता मंगेशकर ने गाया हुआ है
0: जी।
1: और फिल्म बाय बाय भी बहुत सक्सेसफुल हुई थी।
0: हाँ।
1: जिसमें अशोक कुमार, किशोर कुमार, निम्मी, हाँ। निरुपा रॉय सभी ने काम किया था।
0: कमाल है, बहुत ही अच्छे।
1: यस,
0: मुझे याद है कि ये गाने का जिक्र करते हैं मदन मोहन की तमाम सीडीज में भी।
1: यस यस, तो ये बेगम अख्तर को बहुत पसंद
0: आया। राइट,
1: तो ये दिस इज अ फेमस गजल।
0: वंडरफुल, थैंक यू अश्विन। और समय जैसे बेगम अख्तर और मदन मोहन की बहुत बनती थी, कभी भी वो संगीत के बारे में घंटों बातें करते रहते थे। अब देखते हैं कि आपने क्या कहना है
2: जी। जो का कहने एक ना हसबेंड ना रोज स्टोर विच जांदा शुगर दे के आ जांदा सीगा, ते ओही पति ने एक दफा कहंदी के तू रोज स्टोर च जाना शुगर दे के आ जाना वा। कहंदा हां, मैं डॉक्टर ने कहा सी शुगर रोज चेक करनी है।
0: थैंक यू। शुगर को चेक करते रहना है। मंजू डगर, आपने मूवी बता दी है और दोनों नाम करेक्ट आपने बताए हैं, और मंजुला गोरसिया ने बिल्कुल उनकी तस्वीर भी भेजी है जो हैं दूसरे कैरेक्टर। समय एक तो अमजद खान है, उनको कौन नहीं पहचान सकता, बिल्कुल आवाज़ उनकी पहचानी जाती। दूसरे ब्रह्म भरद्वाज हैं, ब्रह्म भरद्वाज, इनको तो किसी को पता ही नहीं, लेकिन ये इतनी फिल्मों में आए हैं पर कोई नाम नहीं याद रखता, ना ही मैंने याद रखा हुआ था। तो चलिए बस अगला सुनते हैं, फिर मैं आपको अगला क्लिप भी सुना दूंगी, पहले ये सुने।

0: आए दीवाना, तलत महमूद का ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब दो आवाज़ें आपको सुनाती हूँ, ये जो हैं सेकंड, और दो गाने मंजुला ने हमें दिए हैं जो इस फिल्म से हैं। एक तो मैंने कभी नहीं सुनाया, वो सुनाऊंगी आगे, लेकिन पहले आपको क्लिप सुनाती हूँ इस फिल्म का। अब ये जो क्लिप है इसमें दो आवाज़ें हैं, आपने दोनों पहचाननी हैं।
1: अरे काले कोट वाले, अरे उधर क्या ढूंढता, इधर देख तेरे सामने कौन खड़ा है।
2: मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे।
1: अरे यहाँ तो क्या, तू जहाँ जाएगा वहाँ तेरे पीछे आऊंगा।
2: अच्छा तो फिर आजा बच्चे, तेरी पिटाई भी मेरे हाथों से लिखी है।
1: अरे बंदूक से तो कोई भी खेल सकता है उस्ताद। ऐसे आना,
2: इससे तो कोई भी खेल सकता है, ऐसे आओ ना।
0: अच्छा ये दोनों कौन हैं? इसी फिल्म के हैं कैरेक्टर्स, इन दोनों के नाम दीजिएगा 07011061061। और जो गाना इस फिल्म से है कहते हैं ये है।

0: कि किस किस ने आंसर किया है। मंजू डगर वेरी गुड, आपने फिल्म का नाम भी दे दिया और दोनों एक्टर्स के नाम करेक्ट दिए हैं। साथ हैं फिल्म का भी नाम भूपी पटेल ने दे दिया है और दोनों एक्टर्स ऑफ कोर्स करेक्ट, भूपी पटेल और सू, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ देम गुड एक्टर्स और एक तो बहुत ही गुड लुकिंग थे, दूसरे बहुत मशहूर हैं। और यहाँ हैं कौन, रूपल, रूपल ने भी बात सही दिया है, आंसर करेक्ट है, फिल्म का नाम भी दे दिया है। और चंद्रिका वासन,
1: अमिताभ बच्चन और प्राण, चंद्रिका,
0: नहीं चंद्रिका ये प्राण नहीं है, प्राण जैसी तो इनकी बिल्कुल आवाज नहीं थी। और कहते हैं विशिंग द लिसनर हैप्पी जुमा। आपने यास्मीन और मेजर वांजा, आपने धर्मेंद्र कहा है, नो धर्मेंद्र नहीं है ये। और आप क्या कहते हैं,
2: विनोद खन्ना वाते मन लगदा, विनोद खन्ना ते,
0: नो नॉट विनोद खन्ना, ओके। और सना काना, आपने एक जवाब सही दिया है, दूसरा गलत है, शबीर अहमद। शहजादी साहब जस्ट ट्यून्ड इन, सलाम पेश करते हैं टू द लिसनर्स ऑफ बेमिसाल, शबीर अहमद, थैंक यू। एक आवाज़ इनकी है और फिल्म का नाम भी है सोनल मोदा, दूसरी आवाज़ किसकी है। और यहाँ कौन है, लक्ष्मण सिंह जगदेव, बिल्कुल करेक्ट आंसर, करेक्ट है, आपने फिल्म देखी है, है। दूसरा आंसर आया है बिंदु का फ्रॉम इंडिया, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। फिर आते हैं जयेश फ्रॉम वोई, करेक्ट आंसर, फिल्म का नाम भी दे दिया। दिनेश पोपट, आपने कहा है नमस्कार जुमा मुबारक, आई लव द बेमिसाल लिस्ट टुडे, आई एम एंजॉइंग, द टू वॉइसेस आर अमजद खान, नो दूसरा करेक्ट है लेकिन अमजद खान इस क्लिप में नहीं है। रीना, गुड मॉर्निंग, एंजॉइंग योर कंपनी, और आंसर है अमजद खान, नो इन दिस क्लिप देयर इज नो अमजद खान, ओके। जबीन हिरानी, सुपर्ब सॉन्ग बाय शैलेंद्र, मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले, अच्छा क्या ये एक्टर सो एंड सो हैं, करेक्ट जबीन हिरानी, वेल डन। और आंसर मिल गया है सना आपको, सोनल मोदा दूसरी आवाज, जी करेक्ट आंसर है। तो अब समिन जो के गाना उन्होंने कहा इस फिल्म का, एक और गाना है

0: कमाल है, लता की आवाज में पंजाबी का गाना बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं समय, अभी फिल्म का भी नाम आपको पता चल गया था, खैर मैंने तो अदाकारों के नाम बताए हैं। दो अब जो अदाकाराएं हैं औरतें, एक एक एज ग्रुप की है, दूसरी दूसरी एज ग्रुप की है, सुनिएगा।
1: तो तू है वो सैंडल वाली? सैंडल वाली
2: हाँ। अरे अरे जाती कहाँ है?
1: मैं वो
2: अंदर आ,
1: अंदर आना। लेकिन माँ जी वो
2: चुप बैठ।
1: ये सैंडल तेरे हैं?
2: ये नहीं नहीं मेरे नहीं है।
1: ये सैंडल तेरे हैं?
2: हाँ।
1: अब बोल, तू खड़ी कमाई के लिए आई है ना?
2: जी हाँ।
1: बोल तू क्या क्या काम कर सकती है?
2: काम सब कुछ जो एक लड़की कर सकती है।
1: अच्छा हाँ, आ मेरे साथ।
0: ये कौन है? दोनों, एक तो हीरोइन, अच्छी हीरोइन, ठीक ठीक, लेकिन जो मदर का रोल कर रही हैं समिन, वो तो मशहूर और मारूफ थी एज अ मदर। मदर के रोल्स इनके सारे यादगार थे। तो दोनों के नाम दे दीजिए 07011106। एक ना दें, अगर आप एक देंगे तो फिर वो मेंशन नहीं होगा, दोनों देने होंगे 07011106106।
3: आज कल शौक दीदार है,

0: Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
1: hello. ये पुराना फोन लग रहा है सामने, जो लोग समझते थे कि आवाज उधर तक नहीं पहुंची, हालांकि पहुंच गई. कमाल का था ये गाना. ये शट अप सुनने के लिए मैं ये आपको सुनाया करती हूँ. खैर, सबसे पहले सही जवाब. अब कोई गलत हो ही नहीं रहा समिन, पहली आवाज़ें गलत होती हैं, बाद में नहीं. मंजुला गोरसिया, आप कहती हैं कि ये जो औरत है ना, ये बॉलीवुड की माँ थी और जो एक्ट्रेस हैं बहुत ही हसीन थी. बिल्कुल मंजू डगर, करेक्ट. अल्ताफ समेजा, भूपी पटेल, सना काना, रूपल, मीरा चावडा, सोनल, नीला शेठ, आप सब ने सही जवाब दिया है. नीला शेठ के बाद भरत गंगाराम आए हैं. आपने ओ, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने रेखा का नाम ले लिया है. एटलीस्ट एक तो गलत हुआ ना भरत, थैंक यू. बाकी सब करेक्ट हैं. मुनज्जम, जुमा मुबारक टू ऑल द लिसनर्स एंजॉइंग योर प्रोग्राम. थैंक यू परवीन जी. द वॉइसेस आर ऑफ श्रीदेवी. दूसरा रॉन्ग. नो, श्रीदेवी नहीं थी. रीना, आपने कहा है रेखा थी, रेखा नहीं थी. मतलब कि तीन आंसर्स गलत आ गए हैं. खुशी हुई मुझे.

0: और अब पता चलाते हैं इस गाने का समीन क्या नगमा था ना काबिले फरामोश गए. अच्छा अश्विन कई ऐसे नगमे हैं अनमोल रतन हैं लेकिन हमें उनकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ही नहीं है. पसंद करते जाते हैं एंजॉय करते हैं लेकिन कौन सी फिल्म है वगैरह वगैरह वो जानकारी आपको लगता है उसके बगैर यू कांट अप्रिशिएट द सॉन्ग फुली है ना.
1: जो जानकारी होती है तो उनका परिचय अच्छा होता है.
0: राइट बिल्कुल
1: यस ये थी फिल्म प्रवीण जी बुजदिल.
0: बुजदिल का क्या मतलब?
1: बुजदिल मींस समबडी फ्रेटेंड समथिंग लाइक ऐसा होता है.
0: बुजदिल मतलब कावर्ड.
1: डरपोक होते हैं. कावर्ड ऐसा
0: जी बिल्कुल
1: या
0: जी.
1: तो ये फिल्म जी प्रवीण जी जिसमें थे ये गाना गा रहे निम्मी और आपके फेवरेट प्रेमनाथ.
0: Oh my God. अच्छा है मैंने नहीं फाइंड आउट किया. चलिए प्रेमनाथ
1: और साथ में थे किशोर साहू वो जिन्होंने एक ट्रायंगल बनाया था.
0: अच्छा पर किशोर ही कुड एक्ट है ठीक थे.
1: किशोर साहू यस नॉट किशोर कुमार किशोर
0: किशोर साहू जी जी सॉरी किशोर.
1: तो फिल्म प्रवीण जी अंत में प्रेमनाथ और निन्नी दे गेट यूनाइटेड.
0: अच्छा
1: और किशोर साहू इज लेफ्ट बिहाइंड. इनका म्यूजिक था एस डी बर्मन का.
0: अच्छा वाह
1: यस यस और आई थिंक इट वाज सॉन्ग वाज रिटन बाय शैलेंद्र इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. और फिल्म हिट हुई प्रवीण जी.
0: क्या बात है बुजदिल की.
1: यस उनके सभी गाने एक लता का गाना था रोते रोते
0: गुजर गई. ओफ आई लव द सॉन्ग.
1: यस और दूसरा था प्रवीण जी ने अलबेली.
0: अच्छा ये अलबेली
1: ने अलबेली
0: मैं अलबेली. अच्छा वो ओके मुझे लगा
1: वो भी था वो भी पॉपुलर हुआ था प्रवीण जी.
0: ओके
1: तो फिल्म हिट हुई.
0: वाह क्या बात है. हालांकि नाम बुजदिल था मैंने कहा कहीं पिट ना जाए.
1: म्यूजिक बड़ा
0: अच्छा था है ना.
1: अच्छा था.
0: चलिए ओके अश्विन सामने अश्विन दोषी भी कहते होंगे मैं कुछ कहना चाहता हूँ ये बीच में कुछ कहती है. अल और रीना रीना ने क्या कहा है. बिल्कुल करेक्ट आंसर रीना आपका है और साथ भरत गंगाराम जी करेक्ट आंसर आपने कर लिया भरत. और जयश्री बनावरा करेक्ट आंसर आपका भी. शबीर अहमद कहते हैं कि ब्यूटीफुल डुएट ऑफ तलत एंड आवर वेरी यंग लता जी. बिल्कुल इनके जब उफ तलत और लता के भी जो डुएट्स थे भुलाए नहीं जा सकते. अच्छा ग्रेट पिक्चर बड़ी अच्छी है अमीर अली राना. गुड ओके अब क्या करते हैं समिन. अभी मैंने आंसर नहीं दिया ब्रेक लेने
2: हैं. इट्स 12:21
3: द टॉप जॉब्स आर वेटिंग फॉर यू On myjobsinkenya.com.
4: Our client is seeking a detail-oriented and experienced full-time accountant to provide financial oversight, ensure statutory compliance, and support management through accurate and timely financial reporting. Bachelor's degree or diploma in accounting, finance, or a related field, and proven experience as an accountant, preferably in an SME environment, is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
3: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications, or interviews.

0: किसी की आवाज़ सुननी है आपने, वो क्लिप्स ख़त्म हो गए हैं और वो क्लिप्स तो चलो वो हो गया, फिल्म सुहाग के थे। अब एक आवाज़ लंदन से आई है।
1: सलाम और आदाब शहजादी साहिबा और सबको। शहजादी साहिबा, ये प्रेमनाथ का जो है ना, इट वॉज अ वेरी वेरी हैंडसम मैन। यू नो मेजोरिटी ऑफ हमारे इंडिया पाकिस्तान के जो एक्टर हैं ना, यू नो लेटर ऑन इन लाइफ दे दारू ये वगैरह वगैरह, यू नो दे रुइन देयर शेप्स, यू नो बिगड़ मोटे हो जाते हैं। इफ आई सेंड यू अ फोटोग्राफ ऑफ प्रेमनाथ एज अ हीरो, बहुत यू आर अ वेरी हैंडसम मैन। बाय।
0: ओके, आज के बाद हम नहीं हंसेंगे प्रेमनाथ पे। लेकिन ये कह रही थी मैं शबीर कि कुछ जोड़ियां ऐसे बनती थी ना, जोड़ियां ऐसे बनती थी कि बिल्कुल मैच नहीं होते थे हीरो हीरोइन। और ब्यूटीफुल सॉन्ग, मुझे दर्द दिल का पता ना था। आज मैं बहुत ही ज़रा टाइड अप हूँ, पर फिर भी आपने बहुत अच्छा किया। एक तो मैसेज आया था वो आपके लिए पढ़ दिया। अभी अभी अश्विन दोषी जो मुझसे बात कर रहे थे तो कहने लगे कि बुज़दिल का एक और भी गाना है। मैंने कहा अच्छा,

और स्वामी जी ने नहीं सुना आंसर, वो थी निरूपा रॉय एंड परवीन बाबी। निरूपा रॉय बहुत मंझी हुई है अदाकारा, और परवीन बाबी ओके हुस्न के लिए जानी जानती थी। अब देखते हैं समन के अगला गाना जो मैंने रखा है, रोते रोते गुजर गई रात। आई कांट टेल यू हाउ थैंकफुल आई एम टू हियर दिस सॉन्ग। अश्विन दोषी जी ने कहा तो मैंने सुना दिया। रूपल आई एम सो हैप्पी, क्योंकि ना मैंने कहा था अब आगे भी दर्द भरा गाना है और उसके आगे भी दर्द भरा, तोबा तोबा इतने दर्द भरे, पर ब्यूटिफुल सॉन्ग्स।

0: अश्विन दोषी, मैं ऐसे ही वाइल्ड गैस कर रही थी, क्या ये दिलीप कुमार पे फिल्माया गया?
1: यस, ये फिल्म थी दीदार।
0: दीदार, जी जी,
1: यस। इसमें कौन नहीं थे? दिलीप कुमार, अशोक कुमार, नरगिस, निन्नी, याकूब,
0: इतने ज्यादा, इतना टैलेंट।
1: फिल्म हिट हुई तरुण जी।
0: उफ, दीदार,
1: दीदार, यस। और म्यूजिक में जोड़ी नौशा वैली और शकील बदायूं जी की।
0: ओह, द विनिंग टीम, बिल्कुल।
1: यस, उनका जो वो जो शमशाद बेगम और गीत जैसा का वो यूएसए, वो बहुत पॉपुलर हुआ था। आप कभी कभी बजाती वो मेरे बचपन के दिन बुलाना देना।
0: जी, बचपन के दिन बुलाना देना।
1: ये बहुत बहुत पॉपुलर हुआ था। और मोहम्मद रफी ने कई तीन चार गाने गाए थे और दिलीप कुमार, वो भी चुभे, वो चले और फिल्म हिट हो गई थी। टू ट्राइंगल, ट्राइंगल, टू ट्राइंगल,
0: तो वह छह बंदे, दो ट्राइंगल।
1: एक ट्राइंगल में थे अशोक कुमार, नरगिस, दिलीप कुमार। दूसरा ट्राइंगल में थे दिलीप कुमार, नरगिस एंड निन्नी।
0: उन्होंने कहा अगर एक कामयाब होता है ट्रायंगल तो उसको दो भी बनाया जा सकता है। बट इट पेड ऑफ।
1: तभी ट्रायंगल का टाइम था ना।
0: जी बिल्कुल, ट्रायंगल वाज रूलिंग, ये करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। बहुत अच्छे।
1: या फिल्म पर हिट हुई और इट्स कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द टाइम।
0: ऑफ कोर्स, दीदार। Incredible. Thank you. और अब सुन लेते हैं आवाज एक बार फिर लंदन वालों की।
2: शहजादी साहिबा, शबीर अगेन, मैं तो दाद देता हूँ अश्विन जोशी को। थैंक यू अश्विन जी, क्या बात है, क्या याद दिला दी आपने। और शहजादी साहिबा, आपको दाद देता हूँ, आपको डबल दाद देता हूँ लगाने के लिए। क्या गाना है और लता जी की क्या आवाज है यहाँ, और ब्यूटीफुली रिटन, क्या म्यूजिक की ब्यूटीफुल, क्या बात है, थैंक यू सो मच।
0: बहुत अच्छे। आई लव योर द फैक्ट दैट यू रियली रिएक्ट टू सर्टन सॉन्ग्स और बहुत इंजॉय करते हैं। और सलीडार फ्रॉम लंदन, द क्लोजर यू आर टू अल्लाह द क्लोजर यू आर टू हैप्पीनेस। बिल्कुल, भगवान के साथ जुड़े रहो, खुशियाँ आपके कदम चूमेंगी। सलीडार, थैंक यू। सना, Today's collection is excellent. Some songs were heart-rending. Have a great weekend. Bahut acche. Salim Meher.
3: Assalamu alaikum, Parveen ji. Salim Meher from London. Aap definitely gaane, itne beautiful gaane play kar rahe hain and sad songs, so that we miss you over the weekend. Khuda hafiz.
0: ताकि आप रोते रहे। सलीम मेहर, अच्छा अब देखते हैं कि अगले, या अगले कई गाने, अभी अभी नहीं जाना रेडियो से दूर।
4: All the great songs that make your day.

0: जाने कहां होके बहार आई। अब चलते हैं
1: जी परवीन जी, मुझे तीन आंसर आते थे और वो पहला यूं है, बहुत याराना लगता है कितने आदमी थे। अरे भाई, अरे भाई मुझे नौकरी मिल गई है भाई, मैं पुलिस में भर्ती हो गया हूँ, अपने उस कागज पर साइन कर दो भाई। पहले उसका साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिखा तेरा बाप चोर है। पहले उसका साइन लेकर आओ जिसने धक्के मार के हमें घर से बाहर निकाल दिया। पहले उसका साइन लेकर आओ जिसने मैं फुटपाथ की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। उसके बाद जिस कागज पे साइन करने के लिए कहोगे मैं तैयार हूँ भाई। हाँ मैं तैयार हूँ। शुक्रिया, अब बाकी की तैयारी सोम के दिन। धन्यवाद।
0: वाह वाह अजय पाल, कमाल कर दिया है आपने, बहुत ही अच्छी।
2: हेलो प्रीत जी, भाग्य में की नींद फक्या के फ्राइडे ने तुसी इन्ने अच्छे गाने लाने हो के दो दिन बहार रहे साडे लिए, असी गाने याद करके बहार मनाउंदे रहिए गाने दी। बहुत दूसरा फैक्ट है थोड़े विच के जदों तुसी छड़ के जाने हो खुदा हाफिज कहने हो ते दो गाने हुंदे ना बहुत अच्छे हुंदे आ, साडा जी करदा तुहानू कॉल करिए। थैंक यू जी, एंजॉय योर वीकेंड।
0: वाकई जतिंदर आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो आखिरी दो गाने अगर उनके बारे में हमने कुछ कहना हो, वाकई इसका हल भी ढूंढ लेंगे। थैंक्स फॉर कॉलिंग। और शबीर अहमद ने तस्वीर भेजी है, ही सेकंड फ्रॉम यूसुफ खान के पास बैठे हुए प्रेमनाथ हैं। थैंक यू शबीर अहमद फ्रॉम लंदन, वाकई आपने सच कहा है।

0: तो अश्विन शबीर अहमद ने कहा है कि दिस इज अ मास्टरपीस ऑफ जोरा भाई.
1: ये जोरा भाई अहमद अवली का, उनका ये नहीं ये होता है लेकिन उनसे जास्ती पॉपुलर हुआ था इस फिल्म का वो अखियां मिला के।
0: अच्छा अच्छा,
1: वो तो सभी
0: कमाल
1: कर दे, सब पागल बन गए थे
0: बिल्कुल. क्या
1: आई रिमेम्बर एज अ चाइल्ड परवीन
0: जी, यस
1: that it was being film thi Parvin ji, kya ratan
0: ji, ye waqai ratan tha,
1: ratan tha. Aur aapko taajub hoega ke the music was by Naushad Ali Parvin ji.
0: Oof, imagine tab se shuru.
1: Yes, yeah, this was his formative days. He was just, he was just 24.
0: Oh my at that time. God! And yet,
1: ye kya kamal kar diya?
0: Kar diya is such a young.
1: And after that, Parvinji, he never looked back.
0: Oof.
1: And because of music and gaane, this film became a blockbuster.
0: Allah.
1: In 1944 ki baat kar raha hoon.
0: Acha. Yes. So imagine.
1: Yeah. और स्टार थे स्वरण दत्ता और करण दीवान, मेन हीरो
0: हीरोइन,
1: एंड नौशाद का म्यूजिक, माय गॉड,
0: और क्या चाहिए. ओ अल्लाह, ऐसा संगीत.
1: दिस फिल्म एस्टैब्लिश्ड हिम एंड फॉर 30 इयर्स प्रवीण जी, ही वाज रूलिंग.
0: वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छे. आज तो अश्विन आपने कमाल ही कर दिया.
1: बस आपने ऐसे गाने बजाए
0: बस. थैंक यू सो मच.
1: यू द क्रेडिट गोज टू यू.
0: एक्चुअली
1: आप बजाती हैं, मैं तो सुनता हूं.
0: बहुत अच्छे, वी आर सो ग्रेटफुल. थैंक यू अश्विन. समन इसी के साथ मैं चलती हूँ और आगे निमृत कौर आ रही है. मुझे इजाजत का कल नहीं, मंडे के दिन, सोमवार के दिन मुलाकात होगी. और दो ब्यूटीफुल गाने.

0: मुझे एक्चुअली कंगना रनौत बहुत पसंद है, आई एम सुपर एक्साइटेड. उनकी फिल्म आ रही है, रिलीज पे है इनफैक्ट जस्ट नेक्स्ट वीक, विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच. इट्स कॉल्ड भारत भाग्य विधाता. एक्चुअली ये जो तीन वर्ड्स हैं या सेंटेंस है, ये हमारे जो इंडिया का यू नो सॉन्ग है, नेशनल एंथम, उसमें आता है ये. और इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ हॉस्पिटल स्टाफ ड्यूरिंग 2611 मुंबई टेरर अटैक्स. या इट इज़ रिलीजिंग ऑन जून 12th. और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट है. तो यहाँ के जो हॉस्पिटल के वर्कर्स थे, द कामा एंड एल्बलस हॉस्पिटल, मुंबई अटैक्स के टाइम पे कंगना रनौत जो है वो नर्स प्ले कर रही हैं, एंड अलॉन्ग विद हर कलीग्स शी रिस्क्स हर लाइफ टू प्रोटेक्ट हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स इंक्लूडिंग न्यू बॉर्न्स, प्रेगनेंट वुमेन, क्रिटिकली इल इंडिविजुअल्स एंड टेररिस्ट अटैक एट द सिटी. द स्टोरी हाईलाइट्स सैक्रिफाइस, ह्यूमैनिटी एंड यूनिटी, पोर्ट्रेइंग द ऑर्डिनरी पीपल स्टैंडिंग बिटवीन टेरर एंड लाइफ इट्स self, emphasizing patriotism and duty in extreme circumstances. This is amazing because जब भी कुछ ऐसे you know चीज़ें होती हैं, attacks होता है या कुछ होता है, besides you know सारा focus terrorist पे होता है कि कौन है, क्यों किया, कैसे किया, और you know लोग जो सफ़र होते हैं उन पर होता है, but बीच के जो लोग हैं, यानी कि police officers या ऐसे hospital का staff या people who are helping out or volunteers, वो कहीं ना कहीं बेचारे you know उनको कोई पूछता भी नहीं कि भाई तुमने तो किया, हाँ किया होगा. सो दिस इज अमेजिंग एंड आई लाइक द वे शी स्पीक्स एज वेल. आई थिंक शी इज ऑलवेज स्पोकन हर हार्ट एंड समवेयर आई रियली गेट इंस्पायर्ड बाय कंगना रनौत. रिसेंटली शी स्पोक समथिंग अबाउट रणवीर सिंह एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट.
1: की हैसियत बढ़ती है तो आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं. यू आर आस्किंग मी, आई हैव बीन बैंड बाय एवरीबॉडी. ओके, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आपकी हैसियत बढ़ती है तो आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं. तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी हैसियत बढ़े और दुश्मन ना बने. तो आज रणवीर सिंह को सोचना चाहिए कि उनकी क्या हैसियत के उनके इतने दुश्मन हैं. तो अच्छा है, जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं तो कई तरह के ऑब्स्टिकल आते हैं. यू कांट हैव जस्ट स्मूथ वॉक ऑलवेज. तो मेरे साथ तो इतना हुआ है. और एंड लुक, टुडे आई एम डूइंग वेल. मेरी भी अच्छी गाड़ी चली रही है, कुछ नहीं फर्क पड़ता. इट्स ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन इवेंचुअली.

बस यादें। मुझे आज ऐसे क्यों लग रहा है हर चीज दिल से कैदों को कनेक्ट कर रही है। यादें रह जाती हैं, पुरानी जीन्स। हाउ यू कैन कनेक्ट विद दिस? ऑफ कोर्स दिस सॉन्ग इज संग बाय अली हैदर द ओरिजिनल, और रिसेंटली सचेत टंडन ने इसे वापस गाया और बहुत खूबी से गाया, विच आई जस्ट प्लेड ऑन रेट्रो टू राइट नाउ विद नीलोफर ऑन ईस्ट एफएम केनियाज प्रीमियर एशियन मिक्स। ऑलराइट, सो थ्री स्टेटमेंट्स, विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज बकवास। द फर्स्ट वन, काला चश्मा सॉन्ग इज बेस्ड ऑन एन ओल्डर Punjabi track, okay. Second one, Arijit Singh once worked as a reality show contestant. And the third one, Lata Mangeshkar recorded a song in Spanish for a Bollywood film. So which one is true? Which one is bakwas? Give me a call or WhatsApp me on 0701 106 106. Aap audio note bhi bhej sakte hain. Aapki awaaz bhi thoda sun le hum, okay?